0: A traditional music piece entitled Sa Libis ng Nayon, and that was rendered to us in instrumental version by the late Richard Tan, and was actually used in a fashion show back in the day. We continue to share to you information about the upcoming election, and this is in the many languages that we speak here in Multicultural Australia.
1: Handa ka na bang bumoto? Ang halalang pederal ay inihayag na. Kung binago mo kamakailan ang iyong pangalan o tirahan, naglabing-walong taong gulang, o naging isang mamayan ng Australia, kailangan mo i-update ang iyong detalye ng pagpapatala o mag-enroll upang makaboto bago ang ikawalo ng gabi sa Lunes. Bisitahin ang aec.gov.au o kumuha ng enrollment form sa limang tanggapan ng AEC at ibalik ito sa AEC bago ang ikawalo ng gabi sa Lunes. Ang iyong boto ay makakatulong sa paghubog sa anyo ng Australia. Autorisado ng Electoral Commissioner, Canberra.
2: Είστε έτοιμοι να ψηφίσετε? Οι ομοσπονδιακές εκλογές έχουν ανακοινωθεί. Εάν αλλάξατε πρόσφατα το όνομα ή την διεύθυνσή σας, συμπληρώσατε τα 18 ή γίνατε Αυστραλός πολίτης, πρέπει να ενημερώσετε την εγγραφή σας με τα νέα στοιχεία σας ή να εγγραφείτε για να ψηφίσετε πριν από τις 8 το βράδυ την Δευτέρα. Επισκεφτείτε το aec.gov.au ή λάβετε μια αίτηση εγγραφής από οποιοδήποτε γραφείο της Αυστραλιανής Εκλογικής Επιτροπής AEC και επιστρέψτε την στην Επιτροπή πριν από τις 8 το βράδυ την Δευτέρα. Η ψήφος σας θα συμβάλλει στην διαμόρφωση της Αυστραλίας. Εγκρίθηκε από τον Εκλογικό Επίτροπο Καμπέρα.
0: Information in the many languages that we speak here in Multicultural Australia, and this is in regards to the upcoming elections.
3: क्या आप मतदान के लिए तैयार हैं? फेडरल चुनावों की घोषणा हो चुकी है. अगर आपने हाल ही में अपना नाम या पता बदला है, आप 18 वर्ष के हुए हैं या आप एक ऑस्ट्रेलियन नागरिक बने हैं, तो आपको सोमवार को रात 8 बजे से पहले अपने नामांकन विवरण अपडेट करने होंगे या मतदान के लिए अपना नाम दर्ज कराना होगा. aec.gov.au पर जाएं या AEC के किसी भी कार्यालय से अपना नामांकन फॉर्म ले लें और सोमवार को रात 8 बजे से पहले उसे भरकर AEC को भेज दें. आपके वोट से ऑस्ट्रेलिया का स्वरूप बनाने में सहायता मिलेगी. चुनाव आयुक्त कैनबरा द्वारा अधिकृत.
4: 연방 선거일이 발표되었습니다. 최근 개명 혹은 주소 변경을 했거나 18살이 되었거나 호주 시민권자가 된 성인은 월요일 오후 8시까지 본인의 등록사항을 업데이트하거나 선거인 등록을 마쳐야 합니다. ac.gov.au를 방문하거나 AEC 사무소에서 등록 양식을 받아 월요일 오후 8시까지 작성된 양식을 AEC에 제출하세요. 여러분의 투표가 호주의 미래를 만듭니다. 캔버라 선거관리위원회 위원장의 승인을 받았습니다.
5: 您准备好投票了吗? 联邦大选的日期已经公布。如果您最近更改了姓名或地址，或刚满 18岁，或者新近成为澳大利亚公民，您必须更新自己的登记资料，或在周一晚上 8点前登记参与投票。请访问 aec.gov.au 或前往任何一个澳大利亚选举委员会办事处索取登记表，并在周一晚上 8点前填好寄回。您的选票将帮助打造澳大利亚的未来。选举专员于堪培拉授权。
6: 98.5 2000 FM.
0: Resilience and Well-being Radio, sharing to you music for you to be able to just relax at this time and enjoy the moment.

0: Radio 2000 98.5 FM Community Program
1: सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM
0: Welcome to the Hindi Show featuring news, interviews, music and community announcements.
1: स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में आप सुनेंगे समाचार विचार संगीत और सामाजिक सूचनाएं.
0: Radio 2098.5 FM Multicultural Radio.
2: आज रविवार युगांत 5126 कलयुग विक्रम संवत 2083 आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी 26 जुलाई 2026 है. दर्पण के सभी श्रोताओं को संजीव शर्मा और प्रदीप उपाध्याय का सप्रेम नमस्कार. अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार. मुख्य समाचार इस प्रकार हैं. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का अंततः इस्तीफा, प्रदर्शनकारियों को भी लिखा खत. राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, बोले मेट्रो इंटरनेट और खाना बंद करा दिया लेकिन पेपर लीक नहीं रोक पाए. क्या मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा, अनशन पर उठे सवालों पर भड़के वांगचुक. सीएम योगी का आगरा दौरा, 342 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, 36 योजनाओं का करेंगे शिलान्यास. आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, दिल्ली से लेकर असम तक पाक के शहजाद भट्टी नेटवर्क के तार. हवा में ही होगा ड्रोन का अंत, क्या है भार्गवास्त्र. और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति ने किया मंजूर. अब सुनिए समाचार विस्तार से. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. कॉकरोच जनता पार्टी ने इस्तीफे का स्वागत करते हुए कहा कि लोकतंत्र की जीत हुई. प्रधानमंत्री को भेजे गए इस्तीफे में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि युवाओं की आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है. उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों से मेरा मन दुखी है, मैं जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा था. उन्होंने पत्र में कहा कि यह पक्का करने के लिए कि जंतर मंतर और पूरे देश में जो हालात हैं उनसे देश विरोधी तत्वों को फायदा ना हो, देश एकजुट रहे, भारत में छात्र कानूनी पचड़ों में ना उलझें और अपनी पढ़ाई और अपने करियर पर ध्यान दें, मैंने प्रधानमंत्री को अपना त्याग पत्र भेज दिया है. कॉकरोच जनता पार्टी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि पहले ही कहा था कि युवाओं का शांतिपूर्ण संघर्ष जाया नहीं जाएगा. जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के खिलाफ मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर नाराजगी जताते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी मेट्रो, रास्ते, दुकानें, इंटरनेट और खाना तो बंद करा दिया पर वे पेपर लीक बंद नहीं करा पाए. गौरतलब है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन में भारी भीड़ उमड़ने की आशंका को देखते हुए वहां 6 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की है. पुलिस और अर्धसैनिक बलों के अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गई हैं. अनशन समाप्त होने के बाद ईमानदारी पे उठ रहे सवालों पर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भड़क गए. सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल तोड़ने पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि छात्रों के लिए 26 दिन तक भूखा रहने के बाद 11 किलो वजन कम हो गया, मसल्स चले गए और मेरे ऑर्गन्स और ब्रेन ऐसे डैमेज हो गए हैं जिन्हें ठीक

0: नहीं किया जा सकता है। और यह सब लद्दाख की कड़ाके की ठंड से आने के बाद, दिल्ली की चिलचिलाती धूप में यह सब करने के बाद, क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? उन्होंने कहा कि मैंने किसके हाथों अनशन तोड़ा, क्या डील हुई, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों को यह नहीं पता है कि मैं किन हालात से गुजरा हूँ, मेरा परिवार पिछले एक दो हफ्तों में किन हालात से गुजरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा के दो दिवसीय महत्वपूर्ण दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ताज नगरी को 342 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 53 बड़ी विकास परियोजनाओं की शानदार सौगात देंगे। अपने इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी कई विभागों की 292 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें स्वास्थ्य और शहर के बुनियादी ढांचे से जुड़े कई बड़े कार्य शामिल हैं। प्रमुख रूप से 93.81 करोड़ रुपए की लागत से 150 बेड वाले लेडी लॉयल अस्पताल का निर्माण, इसके अतिरिक्त DIOS का नया भवन, श्री कैलाश मंदिर का पर्यटन विकास, वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल और बलकेश्वर थीम पार्क का पुनर्निर्माण कार्य भी शामिल है। असम पुलिस ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया है। धुबरी, चिरांग और बारपेटा में 3 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने मोबाइल फोन, सिम कार्ड और कई दस्तावेज भी बरामद किए हैं। पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर और आतंकवादी शहजाद भट्टी का नेटवर्क भारत में युवाओं को बरगलाने और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता रहा है। यह नेटवर्क भारत के कई राज्यों में फैल चुका है और सुरक्षा एजेंसियां इस पर लगातार शिकंजा कस रही हैं। भारत ने ड्रोन खतरों से निपटने के लिए स्वदेशी काउंटर स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र विकसित किया है। यह हार्ड किल तकनीक के जरिए ड्रोन स्वॉर्म हथियारबंद ड्रोन और आत्मघाती ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर सकता है। यह 10 सेकंड में 64 माइक्रो रॉकेट्स दागने और 10 किलोमीटर दूर से छोटे ड्रोन का पता लगाने में सक्षम है। यह प्रणाली 5000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी प्रभावी ढंग से काम करेगी। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा तुरंत स्वीकार कर लिया। बिट्टू केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। उनके इस्तीफे के बाद पंजाब की राजनीति से लेकर मोदी सरकार के संभावित कैबिनेट फेरबदल तक कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 1,44,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 96.97 रुपए और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की 67.46 रुपए। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त होते हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम।
1: दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रदीप उपाध्याय का नमस्कार। संजीव जी, उम्मीद है सिडनी की इस ठंडी सुबह में हमारे श्रोता चाय की प्याली के साथ अपने रेडियो सेट्स ऑन कर चुके होंगे और अगले पूरे 2 घंटे हमारे साथ बिताने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। चूँकि मौसम ठंडा है और हमारा कार्यक्रम भी 2 घंटे का है, अतः श्रोताओं से आग्रह करूँगा कि आप लोग 2 प्याली चाय के साथ तैयार रहें, ताकि जब आपको चाय की दोबारा ज़रूरत पड़े तो हमारा कार्यक्रम बीच में छोड़कर आपको चाय बनाने के लिए न जाना पड़े। श्रोताओं, अभी अभी संजीव जी ने आपको देश दुनिया की ताज़ा खबरों से रूबरू कराया है। आज की प्रस्तुति में करंट अफेयर्स पर खुली और बेबाक बातचीत होगी, कम्युनिटी अनाउंसमेंट होंगे। उसके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ एक नहीं बल्कि 2 अतिथि उपस्थित हैं, जिनका परिचय हम थोड़ी देर में आपसे करेंगे।
0: विशिष्ट अतिथि
1: बिल्कुल। और उसके अलावा आज विशेष कार्यक्रम संजीव जी की फरमाइश पर है, हमारे जो गीतकार हैं आनंद बख्शी, उनकी उनका बर्थडे होता है 21 जुलाई को, तो उस पर एक हम विशेष कार्यक्रम लेके आए हैं। संजीव जी बहुत रोचक जानकारी जो है आनंद बख्शी जी के बारे में लेकर आए हैं, और आज उन्हीं के सुंदर सुंदर गाने आपको सुनवाएंगे हम। और यह सिर्फ सुनने का नहीं बल्कि जुड़ने और सहभागिता का कार्यक्रम है। अगर आपके मन में कोई विचार हो, कोई अनुभव हमारे साथ बांटना चाहें, तो आपका हमेशा स्वागत है। तो तैयार हो जाइए, रेडियो सेट ऑन रखिए, क्योंकि दर्पण का खूबसूरत सफ़र अब शुरू होने जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक सुंदर से आज के विचार से, और फिर सुनेंगे एक सुंदर सा भजन। आजकल AI इतना आगे बढ़ गया है कि लोग डर रहे हैं कि मशीनें इंसानों की नौकरी ले लेंगी, लेकिन झूठ बोलने की कला भविष्य में भी सिर्फ इंसानों के पास ही सुरक्षित रहेगी। श्रोताओं, यह आज का विचार नहीं है, बल्कि यह चुटकी मैंने आपके ध्यानाकर्षण के लिए ली थी। आज के विचार में बात होगी क्रोध की। क्रोध बड़ा होकर प्रतिशोध बनता है, और प्रतिशोध बूढ़ा होकर पश्चाताप। अतः क्रोध के क्षणों में हम जितना धैर्य रखें उतना ही अच्छा है। क्षमाशीलता और करुणा किसी भी मनुष्य के श्रेष्ठतम गुण हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा रेडियो दर्पण शो पर। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा के उस महान शायर और गीतकार की, जिसने आम बोलचाल की भाषा को ऐसा तराशा कि वो 40 से भी ज़्यादा सालों तक देश की धड़कन बना रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आनंद बख्शी साहब की, जिन्होंने 6000 से भी ज़्यादा गाने लिखे और हर पीढ़ी को गुनगुनाने की वजह दी। दोस्तों, आनंद बख्शी जी का जन्म 21 जुलाई 1930 को रावलपिंडी में हुआ था। देश के विभाजन के समय उनका परिवार भारत आ गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले वे भारतीय नौसेना और बाद में भारतीय सेना में एक सैनिक के रूप में कार्यरत थे। फौज में रहते हुए भी वे अपने साथियों के लिए गीत लिखा करते थे। बख्शी जी का असली सपना गायक या गीतकार बनना था। वे अपनी किस्मत अजमाने मुंबई आ गए और उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा। उन्हें पहला ब्रेक 1958 में मिला। फिल्म का नाम था भला आदमी, जिसके लिए उन्होंने धरती के लाल ना कर इतना मलाल गाना लिखा था। और 1965 की फिल्म हिमालय की गोद में जब जब फूल खिले से उन्हें बड़ी पहचान मिली। इसके बाद आराधना, अमर प्रेम, शोले, बॉबी, अमर अकबर एंथनी जैसी अनगिनत फिल्मों के जरिए उन्होंने भारतीय संगीत जगत पर राज किया। तो श्रोताओं, आज हम आनंद बख्शी जी के गीतों को लेके आए हैं, उनके बारे में कुछ बातचीत करेंगे। बट जैसा पहले हमने कहा था कि आज हमारे स्टूडियो में दो अति विशिष्ट गेस्ट हैं, तो उपाध्याय जी, क्या आप हमारे गेस्ट का मुलाकात हमारे सुनने वालों से कराएंगे?
1: और आज के हमारे जो मेहमान हैं, बड़ा सुंदर संगम है विज्ञान, साहित्य, काव्य, तो कुल मिलाकर आज का कार्यक्रम जो है वो बहुत ही रोचक, हर विधा से परिपूर्ण होने वाला है
0: जी।
1: तो वरिष्ठता के क्रम में मैं आरंभ करूंगा, सीनियर मोस्ट फर्स्ट। तो आज के मेहमान मेरे गुरु भी हैं। प्रोफेसर आरपी माथुर ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से फिजिक्स विभाग में कई दशकों तक शिक्षक के रूप में सेवाएं दी हैं। साथ में डीन फैकल्टी ऑफ साइंस, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स जैसे पदों को भी सुशोभित किया है। आपकी कई किताबें मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ी हैं। 175 से अधिक रिसर्च पेपर्स, एक दर्जन से अधिक विद्यार्थियों ने आपके साथ पीएचडी की है। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, इटली में आपने पोस्ट डॉक्टर रिसर्च की है। इसके अलावा आपने 11 पुस्तकें भी लिखी हैं। आपने यूपीएससी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। तो ये तो था प्रोफेसर साहब का फिजिक्स वाला प्रोफाइल, लेकिन आपके जीवन में एक और पहलू भी है, वह हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ है। आपको लघु कथाएं, कविताएं, शेर व शायरी लिखने का भी शौक़ है। सिडनी में आपने प्रोफेसर माथुर को अवश्य ही विभिन्न काव्य गोष्ठियों, कवि सम्मेलनों में अतिथि के रूप में देखा होगा। श्रोताओं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रोफेसर माथुर आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं और हमारे कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ रहेंगे। इस दौरान हम प्रोफेसर साहब से विभिन्न विषयों पर बातचीत करेंगे और श्रोताओं की विज्ञान और साहित्य ज्ञान की प्यास को बुझाने का प्रयास करेंगे। तो प्रोफेसर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय जी। मैं इस स्टूडियो में दूसरी दफ़े आ रहा हूं और तकरीबन एक साल या उससे भी ज़्यादा पहले मैं आया था, और मैं जब यहाँ घुसा इस स्टूडियो में तब से बराबर ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिछली दफ़े मैंने क्या कहा था, कहीं वो रिपीट ना हो जाए, तो उसे अवॉइड करने की कोशिश करूँगा। और ये बड़ी अच्छी बात भी है और मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है इस बात पे कि इस वक्त स्टूडियो में चार महानुभाव हैं और उसमें से चारों का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किसी ना किसी रूप में संबंध रहा है, चाहे 6 महीने का लिया हो या लंबा संभव वो हो। और अलीगढ़ अभी एक यहाँ पे फंक्शन, एक गोष्ठी में भाग लिया था और हमारे संग और भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही विशिष्ट प्रोफेसर मौजूद हैं जिनका परिचय अभी मेरे बाद दिया जाएगा। तो हम लोग वहाँ पे थे और वहाँ पे भी चार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग मौजूद थे और वो सब शायरी करते थे। तो देखिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की वो रिवायत जो मजास के ज़माने से शुरू हुई और फिर अली सरदार जाफरी और फिर ये लास्ट में जो हमारे शहरयार वगैरह हुए और उसके बाद अब शंभूनाथ जी हैं वहाँ जो उस विरासत को आगे चला रहे हैं। तो बड़ी खुशी होती है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपको हर जगह दिखाई देगी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक अपनी छाप है अलीग, वो आपको हर जगह दिखाई देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे फिर से स्टूडियो में बुलाने के लिए और आप सब से फिर से मेरा परिचय देने के लिए।
1: प्रोफेसर साहब आपने तो बिल्कुल अलीगढ़ का जो ब्रांड एम्बेसडर जो बोलते हैं, और आपने बहुत ही सुंदर जो संयोग ही कहूँगा मैं कि जो चार लोग हैं, क्योंकि हम मैं तो खुद अलीगढ़ से, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और बाकी हमारे मेहमान जैसा बताया वहाँ पे हमेशा
0: मैं वो 6 महीने वाला हूँ।
1: हाँ, ये कम जाना हुआ तथ्य है। हमारी दर्पण की टीम के भी शायद बहुत से सदस्यों को ये बात ना मालूम हो कि संजीव जी ने भी वैसे तो इंजीनियरिंग इन्होंने इलाहाबाद से किया था
0: जी,
1: लेकिन 6 महीने जो थे वो अलीगढ़ में भी इन्होंने गुजारे हैं, उसके बाद जो थे फिर वो वहाँ चले गए थे। इसे मैं अपना दुर्भाग्य मानता हूँ क्योंकि अगर संजीव जी वहाँ ना गए होते तो हम शायद सहपाठी रहे होते। तो चलिए बहुत माथुर साहब, और आज का कार्यक्रम में तो भारत ने अभी विज्ञान में अभी जैसे स्पेस इसरो का प्रोजेक्ट अभी था, काफ़ी पिछले दिनों समाचार में रहा, तो उस पर भी चूँकि आप आज हम आपकी थोड़ी फिजिक्स की जो आप विज्ञान में हमारे श्रोताओं को हम चाहेंगे कि आप उनको जो है वो ज्ञान वर्धन उनका करें कि कैसे कैसे भारत ने किया है, और आने वाले आगे कार्यक्रम में हम इन विषयों पर भी बातचीत करेंगे। तो संजीव जी आपने सुंदर इतना आनंद बख्शी का इतना सुंदर परिचय जो है दिया है, श्रोताओं के मन में अब जिज्ञासा होगी कि उनके कौन कौन से अच्छे गाने हैं। श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूँ कि बहुत सारे गाने इन्होंने लिखे हैं, करीबन शायद 4,000 से ज़्यादा,
0: 6,000
1: गाने हैं, तो और एक से एक गाना अच्छा है। और उनकी खासियत ये थी कि बड़ी सरल भाषा में लिखते थे, जिसको आम जन की भाषा बोलते हैं, अदरवाइज वो कुछ शायर इतने जटिल शब्दों का प्रयोग करते हैं कि कई बार अलीगढ़ वालों को भी समझने में दिक्कत हो जाती है कि शब्द का क्या अर्थ है। तो एक सुंदर सा मैं एक रोमांटिक गाना जो है चला के जो है गाने की शुरुआत करते हैं, एक डुएट जो है।
0: बिल्कुल,

0: Curry Master's Complete Curry Mix available at all leading spice shops.
1: श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश।
2: तो गाना भी इंतज़ार वाला था और हमारे श्रोता भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि हमारे दूसरे मेहमान कौन है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय से हैं वो भी। तो नाम डॉक्टर शंभुनाथ तिवारी। थोड़ी शिक्षा के बारे में बताऊं, बीए आपने किया इलाहाबाद से, तो संजीव जी इलाहाबाद का भी कनेक्शन है यहाँ पर। उसके बाद एमए हिंदी में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल लिया साहब ने, और उसके बाद एमफिल और पीएचडी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। तो अगर विश्वविद्यालयों का संगम देखा जाए तो इलाहाबाद से बात चल के फिर जामिया मिलिया और घूमकर फिर अलीगढ़ में आई। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में विभिन्न संस्थानों में शिक्षक के रूप में सेवा देने के पश्चात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं। अलीगढ़ से हैं तो जाहिर है शेर व शायरी का शौक़ तो होना ही है। आपके द्वारा प्रकाशित समीक्षात्मक लेख, व्यंग कविताएं, गीत गज़ल व पुस्तकों की लिस्ट काफ़ी लंबी है, उस पर हम लोग कार्यक्रम के दौरान चर्चा करेंगे। तिवारी जी का परिवार सिडनी में रहता है, अतः हम लोगों का सौभाग्य है कि आपसे मिलना होता रहता है। पिछले प्रवास में मैंने आपको काव्य गोष्ठियों में सुना था। आज तिवारी जी दर्पण हिंदी रेडियो के श्रोताओं के भाषा मनोरंजन व ज्ञानवर्धन के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। तो तिवारी जी, सिडनी के लोकप्रिय हिंदी रेडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, दोनों उद्घोषक संजीव जी और प्रदीप जी। आपने मुझे आमंत्रित किया दर्पण स्टूडियो में, जो बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है, और बहुत खुशी की बात है कि जब पिछली बार आपने बुलाया था तो उस कार्यक्रम को जो भारत में डिप्टी हाई कमिश्नर हैं उन्होंने अपने ट्विटर पर उसको रिकॉग्नाइज़ किया और उसको उस पर लिखा उन्होंने, और फ्रॉम अलीगढ़ टू ऑस्ट्रेलिया, और एक लैंग्वेज को एक ब्रिज के रूप में उन्होंने किया, और हमारे देश के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री सबको उन्होंने टैग किया। ये बड़ी उपलब्धि है, और दर्पण स्टूडियो का नाम लिखकर उन्होंने ये किया। बात चल रही थी, माधुर साहब हमारे बहुत ही वरिष्ठ हैं, और संयोग ये देखिए कि हम चारों कहीं ना कहीं अलीगढ़ से मिलते हैं जी। लेकिन उससे भी बड़ी बात मैं ये कहता हूँ कि हम अलीगढ़ को ही नहीं, हम अलीगढ़ के बहाने पूरे भारत को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। संजीव जी का संबंध मथुरा से है
1: जी।
3: वे यमुना की सुगंध को लेकर इलाहाबाद गंगा के पास गए। यमुना और गंगा जब दोनों मिलते हैं तो उस गंगा यमुनी तहजीब का नाम होता है अलीगढ़
1: जी।
3: उन दोनों तहजीब को जीते हैं वो लोग, और वहाँ से वो सुगंधी जब पूरे देश में फैलती है, उसके बाद पूरी दुनिया में फैलती है, तो हम ये कहते हैं कि एक ही विश्वविद्यालय है पूरे भारत में, बाकी तो शिक्षा देते हैं, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ साथ संस्कृति की भी शिक्षा देता है, तहजीब की भी शिक्षा देता है, और यही कारण है, यही वजह है कि आज हम लोग, माधुर साहब हमारे बहुत ही अग्रिम पीढ़ी के पहले के बहुत ही सीनियर प्रोफेसर हैं, भौतिक शास्त्र के होते हुए साहित्य में इतनी अच्छी रुचि है, प्रदीप जी इंजीनियरिंग के वहाँ से छात्र रहे हैं, संजीव जी का भी संबंध है, और कह रहे थे छः महीने बहुत होते हैं
1: सही है,
3: जब जिंदगी ही चार दिन की मानी जाती है
1: जी,
3: तो ऐसे में जो है मेरा ख्याल है 6 महीने का समय बहुत होता है कहीं किसी को समझने और जानने के लिए। तो कुल मिलाकर एक बहुत अच्छा एक परिवेश, साहित्यिक और सांस्कृतिक परिवेश, और अलीगढ़ के बहाने हम लोग भारत को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, भाषा साहित्य और इसी तरह से दिलों को जोड़ने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपने हमें आमंत्रित किया है, आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है आप दोनों।
2: चलिए तिवारी जी, आपने बहुत सुंदर एक सेतु जो है बनाने का भाषा का और विश्वविद्यालय के अंदर, लेकिन एक जो जैसे आप हिंदी भाषा से संबंधित रहे हैं और अलीगढ़ जो है वो उर्दू और मतलब मुस्लिम विश्वविद्यालय है, उर्दू के लिए जाना जाता है, वहाँ से जितने भी लोग शेर व शायरी का है वो उर्दू वाले अधिक होते हैं, तो वहाँ पे आप हिंदी विभाग और इतने लंबे समय तक आपने वहाँ किया है, तो एक सामान्य जिज्ञासा जो है वो किसी भी श्रोता के मन में उठ सकती है कि वहाँ पे हिंदी को क्या द्वयम दर्जे की भाषा तो नहीं माना जाता है, कि भाई मुख्यतः तो यहाँ पर उर्दू है और हिंदी को शायद उतना सम्मान ना मिलता हो, तो इस विषय में आपका क्या व्यक्तिगत अनुभव रहा है?
3: हिंदी को द्वयम दर्जे का मानना जहाँ तक आपने कहा, ऐसा मेरा कोई अनुभव नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ हिंदी और उर्दू दोनों एक साथ मिलकर चलते हैं
1: जी।
3: आप लोग तो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, माथुर साहब का अमेरिका से संबंध है, इन जो बड़े देश हैं, विकसित देश हैं, वहाँ हिंदी उर्दू जैसा कोई बंटवारा नहीं है। साउथ ईस्ट एशियन लैंग्वेज के रूप में हिंदी डैश उर्दू दोनों एक साथ पढ़ाए जाते हैं। जो हिंदी पढ़ाता है वही उर्दू पढ़ाता है, जो उर्दू पढ़ाता है वही हिंदी पढ़ाता है। और मैं अलीगढ़ में पढ़ा रहा हूँ तो हिंदी और उर्दू दोनों का बड़ा चोली दामन का साथ है। आपको एक उदाहरण बताऊँ, राही मासूम रजा ने लिखा रामायण और महाभारत, और महाभारत लिखा और उन्होंने जिसके साथ बैठकर ये सब डिस्कस किया वो हिंदी विभाग के ही थे, कुंवर पाल सिंह। और कुंवर पाल सिंह उन्होंने जो पहला अपना उपन्यास लिखा था गांव, उसमें भी उन्होंने लिखा कि मेरे पूरे दोस्त कुंवर पाल के लिए, तो आधा गांव का समर्पण भी उसको उन्होंने किया। तो मेरा अपना मानना है जो लोग भी पढ़े लिखे हैं और दिल से नहीं दिमाग से सोचते हैं और दिल से मिला कर देखते हैं तो हिंदी उर्दू में कोई भेद नहीं पाते हैं। क्योंकि एक बहुत अच्छी बात है, एक शेर मुझे याद आ रहा है माधुर साहब के, कांधे को खमदार गेसू से मतलब, मुसलमा से मतलब न हिंदू से मतलब, ख्यालात अच्छे तो बोली भी अच्छी, न हिंदी से मतलब न उर्दू से मतलब।
4: क्या बात है।
3: तो बात अगर समझ में आती है तो हिंदी उर्दू का कोई मसला नहीं है। और उपाध्याय जी, जैसा कि आप कह रहे हैं हिंदी उर्दू, उर्दू जिसे हम आज कहते हैं उसका सबसे पुराना नाम हिंदी है। खालिक बारी में 55 बार हिंदवी शब्द का इस्तेमाल हुआ है और 13 बार हिंदी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो जो सबसे उर्दू जिसका सबसे पुराना नाम हिंदी है और जिसे हम हिंदी कहते हैं उसका नाम भाषा है। भाषा बोलने जा नहीं जिनके कुल के दास, भाषा कहते हैं। तुलसीदास ने भी कहा भाषा बढ़ित भोरी मत भोरी। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। मीर तक अपने आप को हिंदी का शायर कहते हैं। क्या जानो लोग कहते हैं किसको सुरूर कल्ब, आया नहीं है लफ्ज़ ये हिंदी जुबां के बीच। तो हम उस परिवेश में रहते हैं जहाँ हिंदी उर्दू में कोई भेद नहीं है। और हिंदी, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि मैं अभी दिल्ली गया था तो किसी ने पूछा कि वहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है, मैंने कहा हिंदी में 23 लोग हैं, 16 प्रोफेसर हैं। और ये मज़े की बात है कि भारत के जो चार बड़े विश्वविद्यालय हैं हिंदी विभाग, उनमें एक है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। और सबसे पुराना संस्कृत और हिंदी दोनों, मथुर साहब तो गवाह हैं इस बात के कि सबसे पुराना विभाग है संस्कृत और हिंदी, दोनों साथ साथ रहे हैं। तो ये स्थिति है वहाँ की।
2: मथुर साहब आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे?
4: मैं तो सिर्फ ये प्रकाश तो टॉर्च वॉर्च नहीं लाया, अलबत्ता ये है कि मैं उस रिवायत में एक अपनी गजल अगर आप कहें तो सुना दूं, जिसमें भाई वो मीर और उस स्टैंडर्ड की तो शायद नहीं होगी, लेकिन एक मैंने लिखी थी। हुआ ये कि मैं सिडनी में जब आया तो एक दिन खिड़की से देख रहा था और मेरी आँख झपक गई और उसमें कुछ हुआ जो मैंने फिर अल्फाज में कहा। तो वो यूँ होता है कि लो अलीगढ़ का अगर आप दृश्य देखें तो इस तरीके से होता है कि लो मस्जिद से आज़ान उठी, कुछ मंदिर के घंटे बोले, फिर सूरज झाँका पूरब में और चिड़ियों ने भी पर तोले, फिर सुबह हुई जीवन जागा, फिर फूल खिले, लहराई हवा गंगा जमुना के संगम से, बहके आई इस ओर हवा, इस हवा में है आवाज, इस हवा में है आवाज़ बसी गालिब के उम्दा शेरों की, गीता कुरान गुरबाणी के नीरज के सुंदर गीतों की। और जब नीरज जी का जिक्र आता है तो मैं, मेरे गुरु रहे हैं तो मैं भूल नहीं पाता हूँ, और उनकी वो रुबाई मुझे याद आती है कि बादलों से सलाम लेता हूँ, वक्त के हाथ थाम लेता हूँ, मौत रुक जाती है कुछ लम्हों के लिए जब मैं हाथों में जाम लेता हूँ। तो इस हवा में है आवाज़ बसी गालिब के उम्दा शेरों की, गीता कुरान गुरबाणी की, नीरज के सुंदर गीतों की, और ये काका के हसगुल्ले हैं जो हंसना हमें सिखाते हैं, छोटी छोटी सी लड़ियों में जाने क्या क्या कह जाते हैं। साहब काका अलीगढ़ से पास ही है, 20 किलोमीटर दूर था, पहले तो हिस्सा ही था। और काका जो मशहूर हुए वो हुए, उन्होंने एक चौकड़े लिखने शुरू किए और उसमें का एक बड़ा मशहूर उस जमाने में था कि कार मिली ससुराल से न्यू मॉडल डिसेंट, और पहले दिन ही हो गया हैवी एक्सीडेंट, कार वापस कर आए बदले में एक फर्स्ट क्लास गधा ले आए, पूछ पकड़ काका उस पर उल्टे बैठेंगे, आगे वो देखेगा पीछे हम देखेंगे।
3: वाह वाह वाह।
4: काका ने तो लिखा था, लेकिन उससे पहले भी कोई लिख चुका था। कि मोटर चढ़े तो डर लागे दुर्घटना को, और एरोप्लेन में पूँख खिसकत हमारी है, अश्व की सवारी हूँ मलूक कुछ होत ना है, हाथ पाहें टूटे तो पटक कर आ रही है, इक्के हूँ उलट जाए, इक्के आप लोगों ने देखे, इक्के हूँ उलट जाए रेलगाड़ी लड़ जाए, ऐसी सवारी सुन मूर्ख को प्यारी है, और हम तो कहत सब छाड़ के सवारी इनको एक ही सवारी है तो गधे की सवारी है। और साइकिल चढ़े तो फेफड़े खराब होवत हैं, ऊँट की सवारी कट तोड़ दे सारी है, और हाथी चढ़े राजे महाराजे और नवाबजादे, सिंह की सवारी देवी देवता ने प्यारी है, तो जल जान बैल जान वायु जान भैंसा जान इनका सवार तो सदैव ही दुखारी है, हम तो कहत सब छाड़ के सवारी इनको एक ही सवारी है तो गधे की सवारी है। तो इस हवा में है आवाज़ बसी गालिब के उम्दा शेरों की, गीता कुरान गुरबाणी की, नीरज के सुंदर गीतों की, ये काका के हंसगुल्ले हैं जो हंसना हमें सिखाते हैं, छोटी छोटी सी लड़ियों में जाने क्या क्या कह जाते हैं, इस हवा में लाखों रंग घुले, ये केसरिया कश्मीरी है, ये हरा रंग अजमेरी है, ये पीला टेसू फूलों का, ये धानी रेशम झूलों का, और ये लाल रंग अग्नि का है, मर्यादा याद दिलाता है, जब जिसने भी पार करी रेखा रावण उसको ले जाता है। इस हवा इसमें ताऊ का गुस्सा है, इसमें अम्मा की झिड़की है, ना जाने किस गुस्ताखी पर वो किस में जाने भड़की है, इसमें बहना का प्यार बसा जो फिर याद दिलाता है, और आते आते वर्षा रुत के रक्षाबंधन आ जाता है, फिर ईद दिवाली मनती है, घर खुशियों से भर जाते हैं, फुलझड़ी पटाखे चलते हैं कनफोड़ आवाज़ों से जिनके सारा आलम थर्राता है, मैं सिडनी के एक कोने में खिड़की से बाहर देख रहा, ना जाने कब मेरी आँख लगी और हवा का झोंका गुजर गया, फिर याद वतन की दिल आ गया, फिर याद वतन की दिल आ गया।
2: माथुर साहब आपने इतना सुंदर विभिन्न रंगों का आपने परिचय कराया, बिल्कुल भाषा और सवारियों का इतना, और साथ में नीरज जी का भी जिक्र किया, और अभी पिछले हफ्ते ही हम लोगों ने नीरज विशेष कार्यक्रम किया था, क्योंकि उनकी भी जो है अभी इनकी जो है वो मेरे ख्याल से श्रद्धांजलि कार्यक्रम उनके लिए था, तो और वो भी अलीगढ़ के ही हैं, बिल्कुल सही। तो
4: मेरे तो साहब उस्ताद रहे, तो मैं तो उनका बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने कई दफ़े मुझे प्रेरित किया लिखने के लिए।
5: ये आपने गाया भी उन्हीं की स्टाइल में, बहुत
2: अच्छा, बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि माथुर जी जो है बिना किसी कागज पेन के जो है बिल्कुल याद रखते हैं, ये सब युवा श्रोताओं के लिए एक प्रेरक प्रसंग है कि हाँ बिल्कुल अपना अपनी सुंदर कविताओं को इस याद करके सुनाएं तो और अच्छा लगता है। तो चलिए, एक कार्यक्रम का बहुत अच्छा आरंभ हो गया,
1: बहुत ही
2: है। तो संजीव जी एक कुछ आनंद बख्शी जी के बारे में बताइए, और फिर एक उनका फिल्म फेयर अवार्ड जिस गाने को मिला था वो गाना श्रोताओं को सुनवाते हैं।
1: तो जो श्रोताओं, बख्शी जी ने 70 के दशक से लेकर 90 के दशक तक हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के साथ उन्होंने 300 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया। वहीं आरडी बर्मन के साथ दम मारो दम, महबूबा महबूबा और चिंगारी कोई भड़के जैसे काल जय गीत दिए, और पाध्याय जी उनको 4 गीतों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। तो 1978 में आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, उसके लिए मिला। फिल्म थी अपनापन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूज़िक था। 1981 में तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, एक दूजे के लिए, मुझे लगता है फिल्म सबको याद होगी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत था। 1995 में जो एक फिल्म आई थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसका गीत था तुझे देखा तो ये जाना सनम, जतिन ललित जी का म्यूज़िक था। और 1999 में ताल फिल्म में गीत था इश्क बिना क्या जीना यारा, और एआर रहमान जी का था। तो ये 4 गीतों के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से उनको नवाजा गया। तो चलिए एक गीत सुनते हैं उनका ही।

0: तो श्रोताओं, आपको शाहरुख खान और काजोल की ये जोड़ी का गीत आशा करता हूँ पसंद आया होगा।
1: बिल्कुल, ये भी संजीव जी एक जिसको कालजयी फिल्म बोलते हैं,
0: जी
1: बिल्कुल वैसी थी। 1995 में ही आई थी,
0: जी
1: मेरी 75 में शोले आई थी, तो ये 20-20 साल के अंतराल पे शायद
0: जी
1: पिक्चरें आती
0: पंडित
1: थी।
0: उपाध्याय जी, आपको अगर याद होगा कि हम लोग 92 के करीब आए थे यहाँ पे, और तब तक यहाँ फिल्मों का कोई मतलब हिंदी फिल्में देखना वॉज लाइक अ ड्रीम, सपना था। और फिर ये फिल्म आई और किसी ने, आप अगर याद हो, हर्स्टविल में एक कोई कम्युनिटी का जो हॉल था वहाँ पे ये फिल्म हम लोग देखने गए थे, और वहाँ से जो फिल्मों की सिडनी में शुरुआत हुई उसमें ये फिल्म शायद, फिर एक फेयरफील्ड में किसी ने एक सिनेमा हॉल
1: सिनेमा
0: लिया।
1: हॉल हायर किया था।
0: जी
1: हाँ, हम
0: हाँ
1: लोगों ने उस यात्रा के हम लोग साक्षी रहे हैं कि कहाँ
0: हाँ
1: वो एक मेक
0: तो
1: शिफ्ट हॉल होता था, उसमें मूवी
0: जी
1: चलती थी, और आज हम हॉइट्स में और इवेंट में
0: मैं
1: मूवीज को
0: देख रहे,
1: लगा
0: वो तो
1: देखते हैं।
0: सपना था कि
1: सपना
0: कभी
1: था उस
0: हम सोच
1: जमाने
0: ही
1: में,
0: नहीं सकते
1: कभी
0: थे
1: बिल्कुल
0: कि
1: बिल्कुल।
0: हॉइट्स और वो सब जगह फिल्म कभी देख पाएंगे हिंदी
1: तो
0: की।
1: बिल्कुल, तो
0: तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वो हस्टविल से।
1: बिल्कुल
0: जी
1: कल्ट मूवी थी अपने दौर
0: यस
1: की।
0: यस
1: तो आशा करते हैं श्रोताओं को ये गाना पसंद आया होगा।
0: जी
1: थोड़ा एक सामयिक चर्चा पे मैं ले चलता हूँ, और उसका मुख्य कारण ये है कि हमारे साथ दो शिक्षाविद बैठे हुए हैं, और काफ़ी लंबा अनुभव दोनों का विभिन्न कालखंडों में रहा है। तो हमको एक पूरा, एक समझ लीजिए 50-60 साल का जो है पूरा स्पैन हमको मिलेगा कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था जो है कहाँ से आरंभ होके और इस समय इस स्थिति में आई है, तो कैसे आई है। तो पिछले दिनों जैसे नीट एग्ज़ाम जो था वो काफ़ी चर्चा में रहा, उसका पेपर लीक हुआ, और पिछले दिनों काफ़ी आंदोलन भी रहा, और संजीव जी ने समाचार में बताया भी था कि जो उनकी मुख्य मांग थी कि शिक्षा मंत्री को जो है इस्तीफा देना चाहिए, और कल रात उन्होंने फाइनली जो है सरकार ने उनका इस्तीफा लेकर जो है एक उस दिशा में आगे बढ़े हैं। तो ये जो पेपर लीक हुआ है, और जो कि एक राष्ट्रीय स्तर पर एग्ज़ाम किया जाता है, और इसके नंबर्स जो हैं संजीव जी बहुत बड़े हैं, मतलब
0: जी
1: कितने 20 लाख विद्यार्थी इसमें
0: वही मैंने
1: बैठते
0: आपको
1: हैं,
0: बताया
1: और
0: कि
1: देश के विभिन्न कोनों में से इसके सेंटर रखे जाने हैं। और पेपर, तो पेपर लीक होने के लिए बहुत सारे बीच में कहीं पे भी यहाँ से एक जगह से
0: जी
1: चलता है तो वो हो जाता है, लेकिन हाँ व्यवस्था का इसमें फेल्योर तो है ही, ऐसा होना नहीं चाहिए
0: वो
1: क्योंकि
0: है उपाध्याय जी, बट जैसे आज आपने देखा होगा कि विदेशी सारी प्रेस कवर कर रही है कि पेपर लीक पेपर लीक ये, बट शायद उनको उसके स्केल का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। एक तो आप सोचिए पूरे भारत में ये एग्ज़ाम एक साथ होता है, तो खाली वो डिस्ट्रीब्यूशन पेपर्स को हर जगह पहुंचाना इज़ अ बिग लॉजिस्टिक एक्सरसाइज। तो मेरी किसी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी तो मैं पूछा कि क्या, तो वो बोली कि 20 लाख में 20 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और उसकी 85,000 85,000 रैंक है, और उसको लग रहा है कि उसको तो कुछ कुछ भी मतलब 20 लाख में आप अगर पहले 1 लाख में भी आते हैं तो इट्स, तो वो स्केल सोचिए फिर ये डिस्कशन। तो मैं चाहता हूँ कि सुनने वाले वो स्केल ध्यान में रखें।
1: पूरा परिप्रेक्ष्य जो है आपके साथ
0: जी
1: रहेगा, कितने
0: जी
1: बड़े एक एस्टेब्लिशमेंट की हम बात कर रहे
0: बात
1: हैं,
0: कर
1: और
0: रहे
1: उसमें
0: हैं
1: कहाँ कहाँ पे गड़बड़ होने की संभावना है, और
0: संभावना
1: एक भी
0: है,
1: जगह गड़बड़ हो गई तो पूरा सिस्टम फेल हो
0: और
1: जाता,
0: दूसरी तरफ व्हाट्सएप है, ये है, टेलीग्राम
1: फैलाने
0: है,
1: के लिए
0: एक
1: तैयार,
0: सेकंड में फैलने में वो
1: बिल्कुल टाइम
0: टाइम
1: नहीं
0: नहीं
1: लगता।
0: लगता।
1: तो चलिए मैं तिवारी जी से आरंभ करता हूँ, और आप तो क्योंकि वर्तमान में भी इस समय शिक्षा में जुड़े हुए हैं, तो तिवारी जी समस्या से तो आप रूबरू हैं, और मेरे ख्याल से चूंकि भारत में रहते हैं तो आपको हर साल इस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें जहाँ भी गड़बड़ होती होगी तो आपके संज्ञान में तो आती रहती होगी। तो क्या आपको इसका क्या रूट कॉज जिसको बोलते हैं क्या लगता है, और समाधान की तो बात उसके बाद में होगी, मतलब ऐसा क्यों होता है?
2: उपाध्याय जी, भारत ने जब नई शिक्षा नीति लागू की 2020, NEP 2020 कहा गया उसको, उसमें दो तीन पक्ष बहुत ही इन्होंने महत्वपूर्ण डाले। उसमें एक है एथिक्स और दूसरा है वैल्यू। तो एथिक्स और वैल्यू बेस्ड जो एजुकेशन है इस पर गवर्नमेंट का बहुत जोर है, और मैं ये मानता हूँ जब हम शिक्षा में जुड़ते हैं, टीचिंग में आते हैं, जैसे माथुर साहब हैं, मैं हूँ और भी जो तमाम सारे शिक्षक हैं, उनका दायित्व समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब हम शिक्षक बनते हैं तो शिक्षक केवल एक नौकरी नहीं है, यह एक दायित्व है। हमारे सामने वो पीढ़ी होती है जिसको संवारने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है और समाज एक भरोसा करता है। और सबसे बड़ा जो इथिक्स और मॉरल और वैल्यूज की बात है वो शिक्षकों के माध्यम से ही हमारे सामने आता है। अगर हम उसमें कहीं भी शिथिल होते हैं तो मेरा ये मानना है कि पूरे समाज पर उसका असर पड़ता है। आप खड़े होते हैं क्लास में, आपके सामने पूरी पीढ़ी होती है, आपको फॉलो करती है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से कहीं ना कहीं गलतियां हो रही हैं। कुछ सिस्टम लीक प्रूफ नहीं है और कुछ हम में थोड़ा मॉरल कम हुआ है। जैसे मैं ये कहूँ
0: जरूर
2: कि अगर शिक्षक ये शिकायत करें कि विद्यार्थी आजकल पढ़ते नहीं हैं और वो सम्मान नहीं करते अध्यापकों का, मेरे अपने जीवन में जो अनुभव है आज भी अच्छे शिक्षकों का उतना ही सम्मान है। लेकिन हमें शिक्षक को पलट कर ये देखना होगा कि क्या हम उस मानक पर खरे उतर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं अगर कहूँ कि बादल अगर ये शिकायत करे कि ये पौधे हरे भरे नहीं हो रहे हैं, तो उस शिकायत से पहले उसे ये देखना होगा कि क्या वो बरस भी रहा है। अगर बादल बरसे और फिर पौधे हरे भरे ना हो तब तो ये शिकायत वाजिब है
0: जी।
2: जब बादल बरस ही नहीं रहा है और शिकायत कर रहा है, तो कहते हैं ना रिलेशन आर रेसिप्रोकल, तो वो रेसिप्रोकेट जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और अभी जो आप कह रहे थे नीट का पेपर, मैं ये मानता हूँ, मैं खुद उसका सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ। अध्यापक जब इस नैतिकता को भूल जाएगा, क्या उसकी जिम्मेदारी है, क्या उसके दायित्व है, तो मैं समझता हूँ ये समाज थोड़ा भरोसे के लायक नहीं रहेगा। तो उसे अपने बिल्कुल जो हाई लेवल की वैल्यूज़ हैं उसको निभाना होगा। और हम चंद लालच में, वो कहते हैं ना कि अब तो दरवाजे से अपने नाम की तख्ती उतार, लफ्ज़ गंदे हो गए और शोहरत भी गाली हो गई। तो जब शोहरत गाली बनने लगे और लफ्ज़ नंगे होने लगे, तो हमें कहीं ना कहीं पुलिस और शिक्षक में फ़र्क करना पड़ेगा। और उस फर्क को समझते हुए अगर हम आते हैं तो मैं समझता हूँ समाज बहुत ऊँचा जाएगा। और सिस्टम में कहीं ना कहीं जो कमी है उसको ठीक करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है ऑनलाइन उसको ले लिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा
0: जी।
2: और ये जो पेपर आउट होते हैं इस तरह की चीज़ें नहीं हो पाएंगे, मेरा अपना ये मानना है।
1: माथुर साहब
0: बिल्कुल
1: बड़ा अच्छा, हमारे शंभुनाथ जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है। मुझे एक वाक़या याद आता है, ये तकरीबन 1986 के आसपास की बात है। मैं यंग प्रोफेसर था उस वक्त और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक नए प्रो वाइस चांसलर आए थे, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा। और उन्होंने आन के सब प्रोफेसर्स की, यूनिवर्सिटी के सब प्रोफेसर्स की एक मीटिंग की और उसमें ये मुद्दा उठाया कि भाई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इतने दिनों से सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट का, उस ज़माने में नेपाल स्टेट को जितना गवर्नमेंट पैसा देती थी उससे ज़्यादा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की ग्रांट थी। उनका हम इतना पैसा हमें मिलता है लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, जुडिशियल सर्विसेज हैं, उसमें अलीगढ़ का रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो वो उन्होंने कहा कि साहब आप लोग अपनी अपनी राय दें कि क्यों ऐसा है। तो खैर मुझसे बहुत सीनियर लोग थे, मेरा नंबर तो बड़े बाद में आया वहाँ, और सब लोगों ने तकरीबन ये कहा कि नहीं साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं और एफर्ट करेंगे। कोई मुद्दा नहीं पकड़ा किसी ने। मुझे थोड़ी कुछ झुंझलाहट सी होने लगी जब मेरा नंबर आया तो मैंने कहा साहब, और यूनिवर्सिटी अपना बड़ा अच्छा काम कर रही है, सब ये कर रहे थे। जब मेरा नंबर आया तो मैंने कहा साहब ऐसा है कि सर सैयद अहमद ने जिस विजन से यूनिवर्सिटी बनाई थी वो तो ये काम कर रही है अपना, उसके लिए हमें कोई ये नहीं कहना चाहिए कि यूनिवर्सिटी अपना काम पूरा नहीं कर रही। तो उन्होंने कहा भाई कैसे, मैंने कहा विजन सर सैयद का ये था कि एवरेज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एवरेज एजुकेशन दी जाए। तो हमारी यूनिवर्सिटी बिल्कुल एवरेज दे रही है एजुकेशन, वो कोई अच्छी वाली एजुकेशन का एम ही नहीं है हमारा। हमने कभी ये एम किया ही नहीं कि हम एट द टॉप ऑफ लैडर जाएंगे। अब वो जो वहाँ के बुज़ुर्ग वो थे वो तो बड़े बेचारे वो हुए और एक आवाज़ उसकी भी आई कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो नए वाइस चांसलर जो थे उनका आपसे तो ज़रा लंबा डिस्कशन करना पड़ेगा, मुझे अलग से बुलाया। खैर वो उसमें देखिए बात ये है कि जैसा अभी हमारे शंभुनाथ जी ने कहा,
3: अगर टीचर आप अच्छे नहीं रखेंगे, अगर टीचर पैसे पे गिर जाएगा तो फिर सिस्टम आगे नहीं चलेगा। तो सब में पहली शर्त किसी भी सिस्टम को, वो नीट एग्जामिनेशन हो, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हो, किसी भी लेवल का एग्जामिनेशन हो, आप कुछ कर लें, अगर जो माली है वो ही सींचेगा नहीं ठीक से तो पेड़ नहीं बढ़ सकता। तो सब में अहम बात यह है कि आप टीचर को, अच्छे टीचर को पैसे की कभी ज़रूरत नहीं होती। मुझे ख्याल है मेरे टीचर थे एक प्रोफेसर सरकार, वो ये कहा, बंगाली में बोलते थे, बोले वो ये कहते थे, तुम अपना काम करते रहते, पैसा पीछे पीछे आता, एंड दिस इज़ द फैक्ट। तो आपने देखा होगा जैसा अभी शंभुनाथ जी ने भी कहा कि हमारे टीचर्स का मॉरल बढ़ना चाहिए, अगर टीचर पर्चा बनाने के बाद पर्चा आउट कर देता है तो फिर वो टीचर नहीं है। ये लीकेज वहाँ से हुआ, इसमें आप कुछ कर लें, इतना बड़ा नंबर है, जितनी न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा लड़कों के लिए मतलब बैठते हैं एक एक इम्तहान में लड़के, तो वहाँ आप क्या करेंगे। तो बेसिक इश्यू यह है कि हमें अपनी मॉरेलिटीज़ और फिर नए जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है जैसे आप करने वाले हैं उन सबको आजमाना चाहिए। तो आई थिंक
1: इसमें माथुर साहब आपने पैसे की जो बात कही, और एक्चुअली वही मुझको बात पिछले दिनों मीडिया में भी ये बात हुई है कि एजुकेशन में संजीव जी इतने माफिया वगैरह,
0: मतलब
1: माफिया वर्ड एजुकेशन के साथ थोड़ा मिसफिट लगता है, लेकिन जिस हिसाब की जो समाचार जो हम पढ़ रहे हैं रिपोर्ट्स में बिल्कुल सत्यता लग रही है। मतलब करोड़ों हजारों करोड़ का बिजनेस कोचिंग सेंटर्स का चल रहा है। तो माथुर साहब आप कल्पना करिए कि जिस शिक्षक को जो है वो पेपर सेट करने की जिम्मेदारी दी गई है उसके ऊपर कितना, उन हजारों करोड़ वालों के लिए 50 करोड़ किसी एक आदमी को दे देना, उसके घर पहुंचा देना कोई बहुत बड़ी बात
0: बड़ी
1: नहीं, है।
0: नहीं है
1: और ईमान डोल सकता है।
3: नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ईमान नहीं डोल सकता है, ईमान ज़रूर डोल सकता है, लेकिन शिक्षक नहीं है फिर वो, आप उसे शिक्षक की श्रेणी में मत रखिए। यहाँ बहुत बड़े हुए हैं और पेपर क्या सेट यूनिवर्सिटी लेवल पर नहीं होते, हर जगह सेट होते हैं पेपर, और माफिया हर जगह जाता है। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आप उस लेवल पर ले जा रहे हैं। मैं भी नेट सेटिंग, नेट के पेपर में, मैं जैसे यूपीएससी में जब था तो साइंस एडवाइज़र भी था, बहुत से पेपर्स के उसमें बहुत सी चीज़ें हमें मालूम होती थी, तो क्या वो हम लीक कर दिया करते थे, ऐसा नहीं होता।
2: जैसे मैं इसमें एक चीज़ जोड़ूँ आपको, कहा जाता है कि समाचार कब बनते हैं, आप लोग तो समाचार सुना रहे हैं
0: जी,
2: समाचार तब नहीं बनता जैसे अगर कोई कुत्ता अपने मुंह में हड्डी ले जा रहा है तो एज यूजुअल है, लेकिन अगर वही हड्डी एक मनुष्य अपने मुंह में दबा ले तो समाचार का विषय बन जाता है। तो अगर पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं, पटवारी रिश्वत लेता है, वकील रिश्वत लेता है, तो ये समाचार नहीं है, लेकिन एक अध्यापक जब रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है तो ये बड़ा समाचार है, क्योंकि समाज कुछ और अपेक्षा रखता है। और वही मॉरल की बात मैं कह रहा था। दूसरी बात यह है कि आपने पैसे को जोड़ा, सबको आवश्यकता होती है, सही बात है, लेकिन हमें ये देखना है कि वो बाई प्रोडक्ट है, सह उत्पाद है। अगर आप अपने मुख्य उत्पाद पर ध्यान देते हैं, जैसे किसान है
0: जी,
2: किसान गेहूं बोता है, अगर वो ढंग से गेहूं बोए तो भूसा तो अपने आप आएगा, भूसा कुछ होता नहीं है, भूसा बाई प्रोडक्ट है। और कभी कभी बाई प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट है उससे भी अच्छा माना जाता है, जैसे वो सोयाबीन का जो सोया चंक आता है वो बाई प्रोडक्ट है। तो अगर आप सही ढंग से ईमानदारी से आप अपने शिक्षक कार्य को करते हैं तो जो चीज़ें सुविधाएं हैं, पैसा है, तनख्वाह है, प्रसिद्धि है, नाम है, यश है, ये सब तो बाई प्रोडक्ट की चीज़ें हैं। जिस दिन हमारा ध्यान बाई प्रोडक्ट पर लग जाएगा, मुख्य उत्पाद पर नहीं रहेगा, उस दिन ये चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। और यही हुआ है, जब हम सुविधाओं को देखने लग जाते हैं तो हमारा मुख्य कर्तव्य नहीं हो पाता।
0: लेकिन मेरा ये कहना है कि जो जो भी सिस्टम है या जो प्रक्रिया है वो फिर ऐसी बननी चाहिए कि कोई लालच आए या कोई बेईमान हो जाए बट वो चीज अफेक्ट नहीं होनी। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 100 लोगों ने पेपर बनाया, अब किसी को पता ही नहीं है कि वो 100 लोगों में से किसका पेपर लास्ट मिनट पे, तो वही टेक्नोलॉजी ही कुछ करना करके सोल्यूशन निकालना होगा।
1: मिला जुला है, अब जैसे मिलिट्री सीक्रेट्स होते हैं इतनी हाई लेवल,
0: वो भी ही कुछ करना करके सोल्यूशन निकालना होगा।
1: मिला जुला है, अब जैसे मिलिट्री सीक्रेट्स होते हैं इतनी हाई लेवल।